0: お前ね、おじおじおじおでかおってやね、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप इस स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दो चार भी क्या लिखवा ले तू का अरे रे ए ए
1: और जिगर पलट

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले मध्याह्न 12 बजे